0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। जापान के एक अस्पताल ने इंड्यूस्ड प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स या आईपीएस से हासिल शुदा दिल के अजलाती खलियों की तहों का इस्तेमाल करते हुए दिल का पहला ऑपरेशन किया है। मार्च में हुकूमत की जानिब से इस तरीके इलाज की मंजूरी के बाद ये अपनी नौयत की पहली सर्जरी है। एनएचके को मालूम हुआ है कि ये ऑपरेशन मंगल को ओसाका सिटी के ओसाका के सत्स अस्पताल में किया गया। कल भी अजलाती खलियों की तहें यारी हार्ट हुकूमत की तरफ से मंजूरी के बाद सितंबर में हेल्थ इंश्योरेंस के दायरा कार में शामिल की गई हैं। इन शीटों की पैबंदकारी ऐसे मरीज में की गई जिसकी उम्र 50 के पेटे में है और उसे दिल का शदीद आर्जा लाहक है। सर्जरी तकरीबन एक घंटे में मुकम्मल हुई और मरीज की हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इन शीटों को तैयार करने के इंचार्ज और ऑपरेशन को अंजाम देने वाले अस्पताल के सदर सावा योशिकी ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि यह इलाज तेजी से आम होगा, लिहाजा इससे उन लोगों की थोड़ी बहुत मदद हो सकेगी जो इस तरह के आर्जे से दोचार हैं। इन शीटों के लिए मशरूत हुकूमती मंजूरी मिली है जिसमें मजीद सर्जरियों के जरिए इनकी हिफाजत और अफादियत की तस्दीक करना शामिल है। इन्हें तैयार करने वाली कंपनी का हदफ 2033 तक मुल्क भर में तकरीबन 20 तिब्बी मराकज में 75 मरीजों में इनकी पैबंदकारी करना है। बैनुल्कवामी फौजदारी अदालत आईसीसी ने मंगल को ऐलान किया है कि इस साल की सालाना असेंबली को नीदरलैंड्स के दी हेग में मुंतकिल कर देगी। असेंबली नवंबर के आखिर में शुरू होती है। असल में ये दिसंबर में न्यूयॉर्क में अकवाम मदहदा के सदर दफ्तर में होनी थी। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अदालत पर दबाव डालते रहे हैं। उनकी इंतजामिया ने अगस्त में सरबरा अकाने तोमोको समेत आईसीसी की क्यादत पर पाबंदियों का ऐलान किया। इसकी वजह से वीजा पाबंदियों जैसे खदशात पैदा हो गए जो मुमकिन तौर पर अकाने समेत कुछ अहदेदारों को जाती तौर पर असेंबली में शामिल न होने पर मजबूर कर सकती हैं। जराए का कहना है कि मकाम इनेकाद की तब्दीली गैर मामूली है। मलेशिया ने म्यांमार के 5,000 पनागुजीनों को वापस अपने वतन भेजना शुरू कर दिया है, जहां फौज के 2021 में बगावत के जरिए इक्तदार पर कब्जे के बाद से शोरश जारी है। वतन वापसी का पहला मरहला मंगल को शुरू हुआ जब तकरीबन 1500 अफराद को मुल्क बदर कर दिया गया। पनागुजीन बसों के जरिए एक बंदरगाह पर पहुंचे जहां उन्हें म्यांमार की बहरिया के जहाजों पर मुंतकिल किया गया। मलेशिया ने इस मंसूबे का ऐलान गुज़श्ता माह म्यांमार के फौजी हमायत याफ्ता हुक्काम के साथ एक मुआहदे के तहत किया था। क्वालालंपुर का कहना है कि वतन वापसी का अमल मुकम्मल तौर पर रजाकाराना है। यह फैसला ऐसे वक्त किया गया है कि जब महाजरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा था और महाजर मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे। अकवाम मुत्तहिदा का कहना है कि मलेशिया म्यांमार के तकरीबन 1,90,000 महाजरीन की मेजबानी कर रहा है। 60% से ज्यादा पनागुजीन रोहिंग्या मुसलमान अकलियत हैं जिन्हें अपने मुल्क में जबर व इस्तबदाद का सामना है। अकवाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक की तंजीमों ने खबरदार किया है कि फौज और जमहूरियत की हामी कुवतों में झड़पों के साथ साथ नस्ली मुसल्ला ग्रोहों के दरमियान जारी लड़ाई के माहौल में पनागुजीनों की महफूज वापसी के लिए सूरत हाल साजगार नहीं है।
1: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: みんなでバーベキューをしませんか？
1: जी सामीन, उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
2: अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला मियां ने माइक की दावत शायस्तगी से रद्द करने के लिए इस्तेमाल किया है, इसे इसी तरह याद कर लीजिए।
3: दोयोबी वा चुत्तो।
2: चुत्तो के लफ्जी मायनी है जरा या कुछ, लेकिन अगर आप इसके आखिरी हिस्से को सुर नीचा करते हुए खींच कर यूं कहें चुत्तो, तो इसका मतलब होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हिचकिचा रहे हैं। ये तरीका आमतौर पर किसी की दावत को शायस्तगी के साथ रद्द करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी दोयोबी वा चुत्तो का मतलब है कि हफ्ता मेरे लिए जरा मुश्किल है।
1: अब इसे मुख्तलिफ अफराद की आवाज में सुनिए।
4: दोयोबी वा चुत्तो।
5: दोयोबी वा चुत्तो।
6: दोयोबी वा चुत्तो।
1: जी सामीन, अब आपकी बारी है, तो सुनिए और दोहराइए।
3: दोयोबी वा चुत्तो।
2: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं, उस हिस्से पर खुसूसी ध्यान दें जिसमें माइक दूसरों को साथ चलने की दावत दे रहा है।
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。
7: じゃあ二人で行こう。
8: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: अब माइक के साथ पॉप कल्चर का कॉर्नर। आज का मौजू है निंजा।
2: निंजा मौजूदा दौर के जासूसों या खसूसी दस्तों की मानिंद थे। निंजा की तारीख इसरार की धुंध में लिपटी हुई है। ताहम ये 15वीं से 16वीं सदी के दरमियान जापान में जंगजू सरदारों के दरमियान लड़ाइयों के दौर में सरगर्म थे। मिए प्रीफेक्चर के इगारियो निंजा और शिगा प्रीफेक्चर के कोगारियो निंजा ज्यादा मशहूर हैं।
1: निंजा अपने मखसूस हुलिये के लिए मशहूर हैं।
2: लेकिन वो छुपकर दुश्मन के इलाके में दाखिल होने के लिए अक्सर सौदागरों, भिक्षुओं या घूम फिर कर तमाशा दिखाने वालों का भेस बदलते थे।
1: उनके पास जादू या हाथ की सफाई जैसे बहुत से हुनर भी तो होते थे।
2: मांगा यानी कार्टून की किताबों ये फिल्मों में दिखाई जाने वाली ज्यादातर चीजें तो बाद में बनाई गई कहानियां हैं, लेकिन कुछ खुफिया हुनर उनके पास जरूर मौजूद थे। उनमें से एक धात का बना हुआ सितारा शुरीकेन या निंजा स्टार फेंकना था। वो पांव की चाप पैदा किए बगैर चलने और दुश्मन की नजरों से ओझल होने के लिए धुएं के बम इस्तेमाल करने जैसे हुनर भी जानते थे। निंजा अद्वियात और मौसमों के इल्म से भी खासी वाकफियत रखते थे। इसके अलावा वो अपने मिशन की अंजामदही के लिए इंसानी नफ्सियात पर असरअंदाज होने जैसी तकनीक भी इस्तेमाल करते थे। जंगजू सरदार ने जासूसी सरगर्मियों के माहरीन के तौर पर अहमियत देते थे, लेकिन उनके बारे में ज्यादा मालूमात दस्तियाब नहीं है। ये पुरासरियत भी इनकी मकबूलियत की एक वजह है।
1: निंजा जापान की तारीखों से काफत का एक दिलचस्प मौजू मालूम होता है। मैं इस बारे में मजीद मताला करूंगी। अगले सबक में माइक और काइटो मिए प्रीफेक्चर में वाके निंजा म्यूजियम पहुंचते हैं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समय अनुसार 30 सितंबर बुधवार रात 11:30 बजे शांग्रिला जैन और वायला खवानों से सुने समाचार। उष्णकटिबंधीय तूफान सुरिगे बुधवार रात से बृहस्पतिवार सुबह तक मध्यवर्ती टोक्यो के दक्षिण में इजू द्वीप समूह के निकट पहुंच सकता है। तूफान के आने से पहले ही इजू द्वीप समूह पर वर्षा मेघ छा गए हैं, जिससे हाचीजोजीमा द्वीप पर सुबह 10:30 बजे तक 31.5 मिलीमीटर प्रति घंटे की तेज बारिश हुई। क्षेत्र में समय के साथ हवाओं के तेज होने की संभावना है, ऊंची लहरों की भी आशंका है। द्वीप समूह के दक्षिणी भाग में बुधवार रात से लेकर सुबह तक गरज के साथ 50 मिलीमीटर प्रति घंटे की मूसलाधार बारिश का अनुमान है। क्षेत्र के निवासियों से ऊंची लहरों और भूस्खलन के प्रति सतर्क रहने का आग्रह किया जा रहा है। तेज हवाओं, वज्रपात और बवंडरों के प्रति भी सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। टोक्यो के पास चीबा प्रीफेक्चर में बृहस्पतिवार को बारिश तेज हो सकती है। चीबा में हाल ही में रिकॉर्ड बारिश से भारी नुकसान हुआ था। मौसम एजेंसी मृदास्खलन और नदियों में बढ़ते जलस्तर के प्रति सतर्क रहने का आह्वान कर रही है। उसका कहना है कि ढीली मिट्टी और तटबंधों को हुए नुकसान के कारण तेज बारिश न होने की स्थिति में भी आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री इवाया ताकेशी ने पेचिंग में चीनी उप प्रधानमंत्री हा लीफान से मुलाकात की। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध सही नहीं है। पिछले साल जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाई ने संसद में ताइवान में आपात स्थिति के बारे में एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद जापान और चीन के बीच संबंध बिगड़ गए थे। जापान के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन संघ के प्रमुख इवाया ने पीपल्स ग्रेट हॉल में मंगलवार को चीन की आर्थिक नीतियों के प्रभारी हा लीफान से मुलाकात की। बैठक की शुरुआत में उप प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ जापानी राजनेता सैन्यवाद को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं और ताइवान मुद्दे पर चीन की लक्ष्मण रेखा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विकास पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ रहा है। उप प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि गलत टिप्पणियों से उत्पन्न कठिनाइयों और विरोधाभासों को दूर करके ही द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंध फिर से आगे बढ़ सकते हैं। इवाया ने जापान और चीन के बीच संबंधों में आई कड़वाहट दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने का वादा किया। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन इवाया पर दबाव डालकर ताकाइची प्रशासन को नियंत्रण में रखना चाहता है। बैठक के बाद इवाया ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने चीनी पक्ष से चीन में रहने वाले जापानी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्लभ धातुओं तथा अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात को मंजूरी देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के प्रांतीय क्षेत्रों के बीच आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना भी को बढ़ावा भी दिया जाए। इवाया ने कहा कि हालांकि जापान और चीन के बीच संबंध अब भी तनावपूर्ण है, लेकिन उन्हें लगता है कि चीनी पक्ष आर्थिक और निजी क्षेत्र के आदान प्रदान को लेकर सकारात्मक है। उन्होंने आगे कहा कि राजनयिक कठिनाइयों के दौरान बार बार संवाद करना महत्वपूर्ण है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान के एक अस्पताल ने मार्च में सरकार से उपचार के लिए स्वीकृति मिलने के बाद आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त हृदय की मांसपेशी कोशिका शीट का उपयोग करके पहली हृदय शल्य चिकित्सा की है। एनएचके को पता चला है कि यह शल्य चिकित्सा मंगलवार को ओसाका शहर के ओसाका खेसात्सु अस्पताल में की गई थी। सरकारी स्वीकृति मिलने के बाद सितंबर में हृदय की मांसपेशी कोशिकाओं से बनी शीट री हार्ट स्वास्थ्य बीमा के लिए पात्र हो गई है। इन शीट्स को गंभीर हृदय रोग से पीड़ित 50 साल से अधिक आयु के एक मरीज में प्रत्यारोपित किया गया है। सर्जरी लगभग एक घंटे में पूरी हो गई और मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल के अध्यक्ष सावा योशिकी ने आशा व्यक्त की है कि ये उपचार तेजी से फैलेगा ताकि ये उन लोगों की थोड़ी सी भी मदद कर सके जो समान रोगों से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि डॉक्टर सावा आईपीएस सेल शीट विकसित करने के प्रभारी थे और उन्होंने ही ये शल्य चिकित्सा की है। इन शीट्स को कुछ शर्तों के साथ सरकारी मंजूरी मिली है। इनमें आगे की सर्जरी के माध्यम से इनकी सुरक्षा और प्रभावशीलता का सत्यापन करना शामिल है। इन शीट्स को विकसित करने वाली कंपनी का लक्ष्य है कि 2033 तक देश भर के लगभग 20 चिकित्सा केंद्रों में 75 रोगियों में इनका प्रत्यारोपण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो इस वर्ष की वार्षिक सभा को नीदरलैंड्स के द हेग शहर में स्थानांतरित करेगा। ये सभा नवंबर के अंत में शुरू होगी। ये कार्यक्रम मूल रूप से दिसंबर में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित होने वाला था, लेकिन अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आईसीसी पर दबाव बना रहे हैं। उनके प्रशासन ने अगस्त में आईसीसी के अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी। इसके चलते वीजा प्रतिबंधों जैसी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जिनके कारण अकाने सहित कुछ अधिकारी संभवतः सभा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते। सूत्रों का कहना है कि आयोजन स्थल में बदलाव असामान्य है। मलेशिया ने म्यांमार से 5,000 शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि म्यांमार में 2021 में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता हथिया ली थी और उसके बाद से वहां हालात खराब हैं। मंगलवार को स्वदेश वापसी का पहला चरण आरंभ हुआ, जिसमें लगभग 1500 लोगों को वापस भेजा गया। लोगों को बसों से एक बंदरगाह पर ले जाया गया, जहां से उन्हें म्यांमार की नौसेना के जहाजों पर चढ़ाया गया। मलेशिया ने म्यांमार के सैन्य समर्थित अधिकारियों के साथ एक समझौते के तहत पिछले महीने इस योजना की घोषणा की थी। मलेशिया का कहना है कि स्वदेश लौटना पूरी तरह स्वैच्छिक है। ये निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब शरणार्थियों की संख्या और शरणार्थी विरोधी भावनाएं लगातार बढ़ रही थीं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मलेशिया म्यांमार से आए लगभग 1,90,000 शरणार्थियों को शरण दे रहा है। इनमें से 60% से अधिक अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय रोहिंग्या से हैं, जिन्हें म्यांमार में उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने चेताया है कि सेना और लोकतंत्र समर्थक ताकतों व जातीय सशस्त्र गुटों के बीच लड़ाई जारी है और ऐसे में वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त हुआ।